0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। सऊदी अरब ने बताया है कि हमसाया मुल्क यमन में मुल्क और हुकूमत मुखालिफ हूसी फोर्सेस के दरमियान बढ़ते हुए जवाब हमलों के दरमियान सरकारी तेल कंपनी सऊदी आरामको की एक इंतजामी इमारत पर हमला किया गया है। सऊदी अरब की वजारत तवानाई ने बुध के रोज बताया कि मंगल को होने वाले हमले के नतीजे में मशरकी इलाके अज़ोहरान में एक इमारत में महदूद पैमाने पर आग लग गई, जहां सऊदी आरामको का सदर दफ्तर वाके है। वजारत ने मजीद कहा कि कोई शख्स हलाक या जख्मी नहीं हुआ। सऊदी अरब की सरकारी खबरसा एजेंसी ने इतला दी है कि सऊदी जेर क्यादत इत्तहादी अफवाज ने अज़ोहरान में हूसियों के एक मेजाइल को नाकारा बना दिया, जिसके नतीजे में मलबे वगैरह के छोटे टुकड़े रहायशी इलाके में गिरे। मीडिया इदारे ने कहा कि फोर्सेज ने रियाज में भी मेजाइलों को मार गिराया। दोनों फरीकों के दरमियान झड़पें हालिया दिनों में शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाज के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर रवामा मुतअद्दिद बार हमले हुए हैं, जिनके नतीजे में 14 अफराद हलाक और 300 से जायद जख्मी हुए हैं। जैसना हूसी बागियों ने मंगल की रात दावा किया कि सऊदी जंगी तैयारों और मेजाइलों ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यमनी दारुलहुकूमत सना और दीगर मकामात पर 104 बार हमला किया। उन्होंने रियाज के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे और सऊदी आरामको की तनसीबात के खिलाफ हमले की धमकी देते हुए जवाबी कार्रवाई का इंतबाह जारी किया। दोनों फरीकों का सख्त गिर मौकफ बरकरार है, जिसके सबब लड़ाई में मजीद इजाफे के खदशात बढ़ रहे हैं। जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजीज की सालाना नुमाइश का आगाज मंगल को टोक्यो के करीब हुआ। खुद मुख्तार फिजिकल AI इस नुमाइश की गैर मामूली तौर पर मकबूल मसनूआत में से एक है। जापान और बैरूनी दुनिया से 800 से जायद कंपनियां और तंजीमें शीटेक 2026 में हिस्सा ले रही हैं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक AI की मदद से चलने वाले ऐसे रोबोट्स की नुमाइश कर रही है जो स्टोर्स की शेल्फों पर मसनूआत का जखीरा करते हैं। AI टोकरियों में जखीरा शुदा मुतअद्दिद अशिया को पहचानती है, फिर रोबोट उन्हें उठाकर मुकर्रा शेल्फ पर रख देते हैं। मित्सुबिशी का कहना है कि इन रोबोट्स से मजदूरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी NEC एक ऐसे निजाम की नुमाइश कर रही है जो तावान के लिए साइबर हमलों की हूबहू नकल करता है। ये कारोबारी इदारों को वो इब्तदाई रद्द अमल देने के काबिल बनाता है जो उन्हें नेटवर्क से मुतासिर होने की सूरत में देना चाहिए। NEC एक और AI निजाम की नुमाइश भी कर रही है जो सर पर मुंडलाते साइबर हमले की अलामत का पता लगाता है। यह नुमाइश जुमे के रोज तक जारी रहेगी।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। रूसी सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि उन्होंने जासूसी के शुबे में एक जापानी अखबार के रिपोर्टर को हिरासत में ले लिया है। और रूस के मशरिक़ बईद में वाक़ सखालिन की हुकूमत का कहना है कि चीनी कारोबारी और दीगर अफराद के एक वफ़द ने इतरूफू जजीरे का दौरा किया है। ये उन चार जजीरों में से एक है जिन्हें मुश्तरका तौर पर जापान में शुमाली इलाका जात कहा जाता है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: और 10 मिनट को जुप्पन कहते हैं। समीन आपने गौर किया कि 10 यानी जू के साथ मिनट यानी फुन लगाने से ये जू फुन नहीं बल्कि जुप्पन बनता है।
1: समीन अब ये सुनिए और दोहराइए।
0: 5 मिनट
2: कोफुन,
0: 10 मिनट
2: जुप्पन,
0: 15 मिनट
2: जूगोफुन,
0: 20 मिनट
2: निजुप्पन।
0: अब कुछ घंटों के बारे में। घंटे की जापानी है जिकान। घंटों में वक्त बताने के लिए अदद के बाद जिकान लगाया जाता है। मसलन 1 घंटे के लिए इची जिकान, 2 घंटों के लिए नी जिकान। अलबत्त कुछ हिंसों के साथ तलफ़ुज़ कुछ मुख्तलिफ है, इनमें एहतियात करें। मसलन 4 घंटों के लिए यो जिकान, 7 घंटों के लिए शिची जिकान और 9 घंटों के लिए कुजिकान।
1: जी सामीन अब ये सुनिए और दोहराइए।
0: 1 घंटा
2: इची जिकान,
0: 2 घंटे
2: निजिकान,
0: 3 घंटे
2: सांजिकान,
0: 4 घंटे
2: योजिकान,
0: 7 घंटे
2: शिचिजिकान,
0: 9 घंटे
2: कुजिकान।
0: अच्छा हीरा ये बताइए कि 1.5 घंटे को क्या कहेंगे?
1: 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट, तो ये होगा इचिजिकान सांजिपुन।
0: बिल्कुल ठीक, लेकिन सांजिपुन यानी 30 मिनट की बजाय एक और लफ्ज हान यानी आधा इस्तेमाल करते हुए 1.5 घंटे को इचिजिकान हान भी कहा जा सकता है।
1: अब आज का मुकालमा एक बार फिर सुनिए। उस हिस्से पर खसूसी ध्यान दें जिसमें माइक दरियाफ्त कर रहा है कि कितना इंतजार करना पड़ेगा।
3: 15分くらいです。わかりました。すごい。本物の手裏剣だ。あの的に投げてください。えい。ああ、落ちちゃった。
4: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर। आज का मौजू अपनी शमूलियत वाली सियाहत है।
0: जापान में सयाह मुख्तलिफ सरगर्मियों में खुद भी शिरकत कर सकते हैं।
1: जी, आज का मकालमा माइक और काइतो के शुरीकेन या निंजा स्टार फेंकने के इवेंट में शिरकत से मुतालिक था।
0: ऐसी और भी कई सरगर्मियां हैं जिनमें सयाह शिरकत कर सकते हैं। इनमें निंजा या सामुराई का भेष बदलने के अलावा किमोनो पहनना, चाय की तकरीब में शिरकत, फूलों की सजावट का फन इकेबाना और जापानी मिठाई बनाना मकबूल सरगर्मियां हैं। सयाह ऐसी आम सरगर्मियों से हटकर बिल्कुल मुख्तलिफ सरगर्मी में भी शिरकत कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मुख्तलिफ? मसलन किस तरह की?
0: मसलन रेस्तरानों के शो विंडो में सजे हुए अशिया खुर्दनी के नमूने तो आपने देखे ही होंगे।
1: जी हाँ, प्लास्टिक से तैयार किए जाने वाले ये नमूने बिल्कुल असली खानों जैसे ही लगते हैं।
0: सयाह प्लास्टिक के ये नमूने बनाने के इवेंट में शिरकत कर सकते हैं और सानेहात से बचाव की मालूमात में इजाफे के लिए जापानी अंदाज की मखसूस सहूलियात में जलजले, शदीद बारिश, आग या सुनामी के सिमुलेशन में शिरकत भी मुमकिन है।
1: ये सरगर्मियाँ दिलचस्प होने के साथ साथ हंगामी सूरतेहाल की तैयारी के लिहाज से भी मुफीद हैं।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 14 अक्टूबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। रूसी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जासूसी के संदेह में एक जापानी अखबार के पत्रकार को हिरासत में लिया है। संघीय सुरक्षा सेवा FSB ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने सुदूर पूर्वी क्षेत्र सखालिन में होकाइदो शिम्बुन प्रेस के युजनो स्कालिन्स्क ब्यूरो के एक संवाददाता को हिरासत में लिया है। FSB ने इस व्यक्ति पर एक जापानी खुफिया एजेंसी के निर्देश पर रूस की रक्षा क्षमताओं से संबंधित जानकारी जुटाने का आरोप लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि उसे हिरासत में लिया गया और रूस छोड़ने से ठीक पहले मॉस्को भेज दिया गया। रूस के सरकारी टेलीविजन ने FSB अधिकारियों द्वारा पत्रकार को हिरासत में लेने का एक वीडियो प्रसारित किया और साथ ही एक गुमनाम व्यक्ति का साक्षात्कार भी प्रसारित किया। टेलीविजन का कहना है कि वो FSB अधिकारी है। साक्षात्कार के दौरान उस व्यक्ति ने दावा किया कि पत्रकार ने द्वीपवासियों से यूक्रेन पर आक्रमण के लिए लामबंद किए गए लोगों और स्वेच्छा से शामिल हुए लोगों के बारे में जानकारी एकत्र की थी। इन द्वीपों में रूस के नियंत्रण वाले और जापान द्वारा दावा किए गए 4 द्वीप भी शामिल थे। उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि पत्रकार का इरादा इस जानकारी को संबंधित जापानी अधिकारियों तक पहुंचाने का था। इन चारों द्वीपों को जापान में उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। जापान सरकार का दावा है कि ये द्वीप जापान के भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। टेलीविजन केंद्र ने यह भी प्रसारित किया कि मॉस्को की एक अदालत ने पत्रकार को बताया कि उसने उसे 1 महीने और 29 दिनों के लिए हिरासत में रखने का फैसला किया है। रूस की इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने कहा कि जापानी पत्रकार को 12 दिसंबर तक हिरासत में रखा जाएगा। इस बीच जापान सरकार राजनयिक माध्यमों के जरिए रूस से शीघ्र जानकारी उपलब्ध कराने और निष्पक्ष एवं तटस्थ प्रक्रियाओं का पालन करने का आग्रह कर रही है। रूस के सुदूर पूर्व में सखालिन की सरकार का कहना है कि चीनी व्यापारियों और अन्य लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एतोरोफू द्वीप का दौरा किया। गौरतलब है कि ये द्वीप जापान के उत्तरी क्षेत्र कहलाने वाले 4 द्वीपों में से एक है। इन द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है। जापान इन पर अपना दावा करता है। जापान सरकार का कहना है कि ये द्वीप जापान के भूभाग का अभिन्न अंग है। उसका कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। सखालिन सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रतिनिधि मंडल में पूर्वोत्तर चीनी प्रांत हेई लोंगजिया के प्रशासनिक अधिकारी और व्यापारी शामिल थे। सरकार ने बताया कि यह दौरा सखालिन के गवर्नर के अनुरोध पर था और इसका उद्देश्य रूस और चीन के बीच एक संयुक्त परियोजना की संभावना के बारे में अध्ययन करना था। सखालिन सरकार का कहना है कि चीनी प्रतिनिधि मंडल ने सी अर्चिन और सी क्यूकम्बर जैसे समुद्री जीव पालन में रुचि दिखाई और पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। जापान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार देर रात राजनयिक माध्यमों से रूस और चीन से संपर्क किया। मंत्रालय ने कहा कि उसने दोनों देशों से इस मामले पर उचित कार्रवाई करने का पुरजोर आग्रह किया है। जापान ने यह भी कहा कि उसने दोनों देशों को यह स्पष्ट कर दिया है कि रूसी गतिविधि जापान के इस निरंतर रुख के विपरीत है कि उत्तरी क्षेत्र जापान के भूभाग का अभिन्न अंग है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने खुलासा किया है कि पड़ोसी देश यमन में सरकार विरोधी हूथी गुट के बढ़ते जवाबी हमलों के बीच सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की एक प्रशासनिक इमारत पर हमला हुआ है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि पूर्वी क्षेत्र के दहरान में, जहां सऊदी अरामको का मुख्यालय है, वहां मंगलवार के हमले में उसकी इमारत के एक छोटे हिस्से में आग लग गई। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने दहरान में हूथी गुट की मिसाइल को रोका, जिसके परिणाम स्वरूप उसका मलबा एक रिहायशी इलाके में जा गिरा। एजेंसी ने यह भी बताया कि सेना ने रियाद में भी मिसाइलों को मार गिराया। हाल में दोनों पक्षों के बीच शत्रुता और बढ़ गई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस महीने कई हमले हुए, जिनमें 14 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। इस बीच मंगलवार रात को हूथी गुट ने दावा किया कि सऊदी अरब के युद्धक विमानों और मिसाइलों ने पिछले 24 घंटों के दौरान यमन की राजधानी सना और अन्य जगहों पर 104 बार हमले किए। गुट ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और सऊदी अरामको की सुविधाओं पर हमले की धमकी दी। दोनों पक्ष कड़ा रुख अपना रहे हैं, जिसके कारण लड़ाई और तेज होने की आशंका है। अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों की वार्षिक प्रदर्शनी सीटेक मंगलवार को टोक्यो के पास शुरू हुई। प्रदर्शनी में ऑटोनॉमस फिजिकल एआई की काफी चर्चा है। सीटेक 2026 में देश विदेश की 800 से अधिक कंपनियां और संगठन भाग ले रहे हैं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एआई संचालित रोबोटों का प्रदर्शन कर रही है, जो स्टोर शेल्फ पर उत्पादों को लगा सकते हैं। टोकरियों में रखे विभिन्न उत्पादों को एआई से पहचाना जा सकता है। रोबोट उत्पादों को उठाकर निर्धारित शेल्फ पर रख देते हैं। मित्सुबिशी का कहना है कि रोबोटों से श्रमिकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी एनईसी एक ऐसा सिस्टम प्रदर्शित कर रही है, जो रैंसमवेयर हमलों का अनुकरण करता है। यह व्यवसायों को ये समझने में मदद करता है कि नेटवर्क पर हमला होने की स्थिति में उन्हें शुरुआती चरण में क्या कदम उठाने चाहिए। एनईसी ने एक एआई सिस्टम भी प्रदर्शित किया है, जो साइबर हमले के संभावित संकेतों का पता लगाता है। सीटेक प्रदर्शनी शुक्रवार तक जारी रहेगी।
1: मुख्य समाचार एक बार फिर। रूसी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जासूसी के संदेह में एक जापानी अखबार द होक्काइडो शिंबुन प्रेस के एक पत्रकार को हिरासत में लिया है। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।